0: रेडियो सुनो 91.7 एफएम कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन। चेन्नई बीट्स
1: तमिल हिट ऑफ द आवर।
2: இந்த ஆட்டம் போதுமா குழந்தை?